शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: नहीं दीगा। अच्छे अच्छों को चूज कर गुठलिया फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खानी कितड़ बहनूरे लाई आउणगियां, हुण नी जज जमानत दिंदा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: संदीप एक बारी फतेह।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर

कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज सर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर जहर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: मैं सिंगल सिंगल हैप्पी सो मन में

0: खाना तुम जो मदिरा से बड़ो मैं खाना लगती हो।
1: Your home for culture, community, and unity. Here on CJMR 1320.

दो, जलने दो, समाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो, जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें फिर तू उनकी।

0: से अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खाली कितड़ बहनू रेला आउणगियां, हुण नी जज जमानत दिंदा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे। अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
1: Your home for community. CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: The voice for your community, the voice of the city, CJMR 1320.

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਣਾ।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे मेरी निक्की भैन का व्याह मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी
3: क्यों नहीं चन करे कहे तो सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा दें
2: ठीक है जी चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने सेट रानी हार छापा मुंदरियां छल्ले बिस्कुट चेनिया वंगा कोके टिक्के कड़े ब्रेसलेट मंगलसूत्र सब कुछ प्योर ते यूनिक
3: हां नाले मैं सारी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने 12 चूड़ियां ओनु भी ले दांगे
2: तो मेरे जीजे ली घड़ी
3: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां रोलेक्स दियां सारीयां घड़ियां हुंदियां
2: चलो फिर चेती चलो अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड मालटन इन अशोक प्लाजा फोन नंबर है 9056714290